कित पाओ अंतर्गत तीर्थ मलनाओ सब गुम ठेरे में नाई कोए विनगुन कीते भोग न होए स्वास्थ हाथ बानी ब्रमाओ सत सहन सता मन छा कवन सुवेला भगत कवन कवन तित कवन वार कवन सुरति माहो कवन जिथो आकार वेना पया पंडती जे होवे ले पुराण वकत न पायो कदिया जिलकन ले करान तितवाना जोगी जाने रटा माहो ना कोई चकरता सिटी को साचे आपे जाने सोई किव करा का किव सलाही क्यों वरनी किव जाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जाक होवे नानक जे को आपा जाने अगे कहना सो है पतला पताला अगासा अगास ओड़क ओड़क तल पल तके वेर कहन कवारता सहस टरन किं किं किते प असुले कतात लेका होए ता लेके लेके होए वरनास नानक वड्डा आकिए आपे जाने आप सलाही सलाहे इति सुना पाया नदिया आते वा पवे सुमंद न जानिया है सुमंद सब सुतान गेर सती मलदान कीवटी तू न होवनी जेत सुमन न विसर है अंत न सिद्धि किरण न अंत अंत न करने

भगत ज्ञान दरियान भंडारण गटगट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिझरावर साध संजोग विजो

कर कर वे के सृजनहा नानक सच की सचिकार आतेस्त से आदेश आदि नील नार नाह जुग जुग एक वेस एक दूजी पौ लख हुए लख हुए लखवीस लख लख केरा आखिया है एक नाम जगदीश एत रहे पट पबड़िया चिड़िया होया कीस सुन कला आकाश कीट आयरीस नानक नर दी पाइय कोड़े कोड़े ती साकन जोच पे ना जो जो न मंगन दे ना जो जो न जीवन मरण ना चोर जो न राज मल मन सोर जो न सृति ज्ञान विचार जो न जुगति शुक्ते संसार जिस हत जोर कर वे कसोए नानक तुम नीच न कोए रते रते तिथि वा पावन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थापर की तरमसाल तिस विच जियो जगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी हुए विचार सच अप सच दरबार तिते सोहन पांच प्रवान नरी करम पवे निशान कच पकाए ओते पाए नानक काया जापे जाए

केते अखरम भूमि मर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सर्वनाथ केते केते देवी वेश केते देवता नवमन केते केते रतन समुंद केते अकानी केते अपानी केते पात नरेंद केते सुरति सेवक केते नानक अंत न अंत ज्ञान खंड में है ज्ञान प्रचंड तिते नार बनोर खोर नंद सर्म खंड की पाणी रूप तिते करत करिया बहुत अनुपा ठाकिया कला कथिया न जाहे जेको कहे पिछे पिछ ठाहे तिते करिया सरत मठ मन बुद्ध तिते करिया सरस राखी सिद्ध कर्म खंड की पाणी जोर तिते हो न कोई होर तिते चोर महाबल सूर तिन में राम रहिया भरपूर तिते सीता सीता में माहे ताके रूप न कत न जाहे ना ओहे मर न टागे जाहे जिन्न के राम बसे मन माहे तिते भगत से के लोआ करे आनंद सचा मन सोए सच खंड विसे निरंकार खर खर वेक नर नहा तिते खंड मंडल पर पंड जे खत कते था अंत न अंत तिते लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवे तिव कार वेक विगस का विचार नानक कत न कट सार जट पहार तीर जसनियार एरन मत वेद हथियार पौ काला अकंत पताओ पंड पामृत तित टाल करिया शब्द से चीतक साल जिरको नर करम तिन कार नानक नर री नर नहा श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तरत महता दिवस रात दी दाई दया खेला सकला जगत जया मुरियाया वाचे तरम दूर करमी आपो अपनी केने अडे के दूर जिन्नी नाम ते आया के मसकत काल नानक ते मकर जले

संख माया झूठी कारणे नानक से जागन जी रसना नाम उच्चारणे मृग दिसना पेख पुलणे उठे नगर गंधर्व जिनी सच राध्या नानक मन तन फब पतत उधारण पार ब्रह्म समरत पुरख अपार जिस है उतारे नानका सो सिमरे सिर जनहार जी छोड़ कुवाटड़ी किस सोच तलाए दूजे पावई नानका वहन लोड़ंदड़ी लचाए तिहटड़े बाजार सौदा करने बन जारिया सच वखर जिन्नी लद्या से सछड़े पासार पंथा प्रेम

संति संदूर सुहाई सरस अहिर ले पार जा संग लाई पांचो आर जा सुरमानंद भास्कर आए चंद्र बिंब मंगल न सुहाए सरस बान आहे बिनोदा कब है सरस बसंत कमोदा अष्ट

गावन तुधन पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुधनो चितकु पत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन तुधनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहं तेरे सदा सवारे गावन तुधनो इंद्र इंद्रा सुन बैठे देवती आदर नाले गावन तुधनो सित समाधि अंदर गावन तुधनो साध विचारे गावन तुधनो जति सती संतोखी गावन तुधनो वीर करारे गावन तुधनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन सुनक मच पे

दुनो खाणी चारिक गावनत दुनो खंडमंडल ब्रह्मंडा करका रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन ज्योत पवन रत तेरे भगत रसाले और केते तुदनो गावन से मैं चितनावन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा सची नाई हैप्पी होसी जाय न जासी रचना जिंद रचाई रंगे रंगे पाती कर कर जिनसी माया जन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सोपत साव सहापत साहेब नानक रहन रजाई असा महला पहला सुन बड़ा खै सब कोए केवड़ बड़ा डीटा होए कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वडे मेरे साहेबा गाहिर कंपीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड़ चिरा रहा सब सुरती मेले सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कहन न जाए तेरे तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा क्या वड्या आईया तुद बिन सिद्धी कि ना न पाईया करम मिला नहीं ठाकर आईया आखन वाला क्या वेचारा सिफती भरे तेरे पंडारा जिस तू दहै तसे क्या चारा नानक सच सवार नहारा असा महला पहला आखा जीव विसर मर जाओ आखना औखा साछा नाओ सच नमकी लागे भूख उत भूख है खाए।

किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संवाहे, ठाकुर काहे मन पौ करिया, ऊडे ऊडा वैस को सतस पच्छ बचरे चरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन मह स्मरण करिया, सबने धान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, चन नानक बल बल सद बल जाये तेरा अंतन पारा वरिया, राग समहला छोता सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर, अगमा अगम अपारा, सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा, सब जिया तुम्हारे जी तू जिया का दातारा, हर त्यावो संतो जी सब दुख वसारनारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे छो जब डाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हो तुद बिन अवर न जाना, तू पर ब्रह्म अंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना, जो सब है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावे तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत पय जन हर त्याया जी, तिन तुट्टी जम की फासी, जन नर पौ जन हर नर पौ, त्याया जी तिन का पौ सब गवासी, जिनसे व्या मेरा हर जीते, हर हर रूप समासी, से तन जन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक कर हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता, तेरे अनेक पढ़ै बहु स्मृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट करम करंता, से भगत पल

जियो हमारा, नमस्कारत सही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरुण को पल मोबद कियो, घट घट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचल असतूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछाण, घट घट के

जेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही तै रहत निरालम जनत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभव

कहबद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहि पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी काहू फूल राजा हैं बैठा कहू सिमट उपयो शंकर कैटा सिगर सृष्ट दिखाय अचंभव वाद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रचा मेरी तुम करो सख्यो बार्य सिख संकरो तुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तवाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।